0: दूर ऐसे हम चरके नहीं मंजूर ऐसे
1: वफा में लोग लुटाते हैं जाने तुम्हें आशिक भला हम कैसे माने
0: सुबह हो इश्क में तो इम्तिहान लो मेरी तस्वीर न लो मेरी जान लो कहो जाने वफा अब क्या कहोगे क्या

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।